0: 106.2 बिग एफएम के स्टूडियोज में हैं हम अभी। मैं हूं एमजे अर्पित, मेरे साथ है प्रीति एंड मेरे साथ है टैलेंटेड मैन नॉक्स आर्टिस्ट।
1: व्हाट्स अप, हाउ यू?
0: आई एम गुड मैन, व्हाट्स हैपनिंग। एक अनबिलीवेबल सा एक चैलेंज ले लिया नॉक्स ने। उन्होंने ये कहा है कि वो एक बीट पर बहुत सारे गाने गाने वाले हैं। यू थिंक दैट्स गोना हैपन?
2: आई थिंक इट विल हैपन, बट वी लाइक टू गिव हिम द सॉन्ग्स।
0: आई थिंक इट विल नॉट हैपन जस्ट बिकॉज वी आर गिविंग हिम द सॉन्ग्स।

पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले साँझ 7 बजे

हुआ जब विद्युत जामवाल अपने शूटिंग साइट पे थे तो उन्हें एक फैंस मिला और विद्युत जामवाल ने चैलेंज दे दिया अपने फैंस को कि ये किक करके दिखाओ। और ये किक चैलेंज कुछ ऐसा वैसा नहीं था, जहाँ पे विद्युत जामवाल अपने हाइट से भी ज्यादा ऊपर एक बॉटल पकड़े थे और फैंस को उसे किक करना था। देखो क्या हुआ जब विद्युत जामवाल अपने शूटिंग साइट पे थे तो उन्हें एक फैंस मिला और विद्युत जामवाल ने चैलेंज दे दिया अपने फैंस को कि ये

0: भाई एक डील है, एक आदमी को रास्ते से हटाना है, तेरा उसका फोटो और 1 करोड़ रुपए।
1: ठीक है, काम हो जाएगा।

0: भाई एक डील है, एक आदमी को रास्ते से हटाना है, मेरा उसका फोटो और 1 करोड़ रुपए।
1: ठीक है, काम हो जाएगा।

0: अरे सर यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, इनमें से पता किसे चलेगा कौन चोर है?
1: अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है? हमें ना तुमको बस इतना बोलना है कि चोर चोर चोर पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जो इनमें से भागने लगेगा समझ लेना वही चोर है, उसी को पकड़ना है।
0: ठीक है सर,
1: बोलो। चोर चोर चोर चोर पकड़ो पकड़ो पकड़ो चोर चोर चोर।
2: समझ रहे?

0: मम्मा मैं एग्जाम देके आ गया।
1: अरे वाह, कैसे गया एग्जाम?
0: बहुत अच्छा गया, मुझे पास होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं 3 घंटे का पेपर आधे घंटे में लिख के आया।
1: अरे वाह मेरा बेटा,
2: 3 घंटे का पेपर आधे घंटे में?
0: हाँ, मुझे यकीन नहीं होता।
1: यकीन नहीं होता?
2: देख लेते अभी, लो क्वेश्चन पेपर दिखाओ।
1: दिखाओ दिखाओ।
2: ये आंसर इन वन सेंटेंस, व्हाट आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर?
0: अरे मेरा बेटा, हाँ पहले क्वेश्चन में हो गया मेरा बेटा टाइटल फिश, तो पकड़ो।
1: हाँ याद आया,
0: 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, पर्सनल मैटर, फैमिली मैटर, डजेंट मैटर। 100% पास हूँ मैं। मम्मा मैं एग्जाम देके आ गया।
1: अरे वाह, कैसे गया एग्जाम?
0: बहुत अच्छा गया, मुझे पास होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं 3 घंटे का पेपर आधे घंटे में लिख के आया।
1: अरे वाह मेरा बेटा,
2: 3 घंटे का पेपर आधे घंटे में?
0: हाँ,
2: मुझे यकीन नहीं होता।
1: यकीन नहीं होता?
2: देख लेते अभी, लो क्वेश्चन पेपर दिखाओ।

0: क्या होता अगर नेपाली गानों को कई सारे इंडियन सिंगर्स मिलकर गाते तो? आपको भी जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अरिजित सिंह ने गाया हुआ नेपाली गाना तो ओरिजिनल से भी अच्छा हुआ है और ये सिर्फ एडिटिंग से संभव हुआ। सो लाइक करें। नंबर 5, विशाल मिश्रा, यस्तो पनि हुँदो रहे।
1: मेरो जस्तो माया दिने तिमीलाई।
0: नंबर 4, आतिफ असलम, फुल।
2: जो न हेर्नु तिमी मति मति।
0: नंबर 3, नेहा कक्कड़, अरली कांडे।